दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

Bí FBS gur gar vidi sin nean un sara gari crom e lami tons rada halka full kama ra bo gari crom go you overall sami bata bini bida lini sami a isa ki gusam asha gar dusu tabale parpur manoranjan di saknu bai gusa gari crom ma sate interesting facts haru yen ki rochak tatthi haru bin tapiko maza ma share gari guthi nikere faida zanak bai gusa bini ma asha gar dusu shrita ra gari crom halka full kama you interesting matuna ber ekdame informative education apani unikarsa mira bishes azami AI को बारे में से लिब्रिस्टी थ्रू माचान के लिए राय को थी अलियो AI को इम्प्लीमेंटेशन जैसे डिस्ट्रो एयर में हमें प्रवेश कर सके का सो तेरे कुरा आ रहे से हमें लिए बूस्ट पड़े पड़े उन सा नए कुरा लाई इम्ब्रेस करने को साथ साथ से हम लोग कती कुरा में सतर्कता आ रहे पड़े अपना उन्हें पढ़ने रहे उन सा इस बारे में जानकारी रहे को थी हो Robin is Ruta Karikrom, but a bida lida lide, you euta meter gate mini rakni nisu tapiko masama, and jigarna soknu nisa sruta. Next week, Hamikarikroma bidni niso, 105.4 megahertz, tinigarnola, folkstone basi, tapiko area ma, ready access nobiko karnama, simply BFBS app don garnola, a bibina station sormati, BFBS gurka siligarnos, sati smart speaker, marshfield pentabile hamilai, play BFBS gurka, panira sunna soknu nisa. Robin Karikrom, but a bida linisu, halka, फुलकाको BFBS गोर्खा रेडियोको प्रस्तुति र हामी नेक्स्ट विक भेट्ने नै छौँ भन्दै म सुनिया पनि आई विल बी साइनिङ अफ फर नाउ नमस्ते बाई बाई